तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, 6:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9 बजे हिंदी में समाचार, 9:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10:02 पर लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। और 11 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दिल्ली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश। फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा

0: टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both Houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, The National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
4: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashvani News, Delhi.
3: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations of the National Education Policy, the CBSE had introduced two board examinations for Class 10 from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. The CBSE said that the overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. In Jammu and Kashmir, Sri Amarnath Yatra will remain suspended from both the Pahalgam and the Baltal routes from today as a precautionary measure in view of the adverse weather forecast. The decision was taken following the India Meteorological Department's forecast of inclement weather over the next few days to ensure the safety and well-being of pilgrims. The official said no onward movement of Yatris will be allowed from the Baltal and Nunwan Chandanwadi base camps until further orders. Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has also temporarily suspended the Vaishno Devi Yatra in view of the inclement weather advisory issued by the IMD. According to an official update issued by the Shrine Board, the decision has been made as a precautionary measure to ensure the safety and well-being of pilgrims. The authorities are continuously monitoring the weather situation and the Yatra will resume once conditions are considered safe for pilgrims. The IMD has warned of a fresh spell of heavy rainfall over parts of Jammu and Kashmir, with the possibility of flash floods, landslides and waterlogging in vulnerable areas. Administration has advised residents to avoid unnecessary travel and to stay away from water bodies. The Indian Meteorological Department has issued red and orange alerts for heavy to extremely heavy rainfall across Uttarakhand today. Continuous rainfall has been reported in several parts of the state, leading to a rise in the water levels of major rivers. More from our correspondent.
5: The IMD has issued a red alert for extremely heavy rainfall in Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar district today. An orange alert has also been issued for heavy to very heavy rainfall in Dehradun, Tehri, Pauri, Haridwar, Uttarkashi, Rudraprayag and Bageshwar districts. Thunderstorm accompanied by lightning and intense spell of rain are also likely in several areas. Authorities have also been instructed to keep machinery and other essential resources ready along the landslide prone routes. Meanwhile, State Disaster Management Secretary Vinod Kumar Suman has appealed to residents, Chardham pilgrims and tourists to follow weather advisories and to avoid unnecessary travel. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
3: With the southwest monsoon remaining active over Himachal Pradesh, intermittent rainfall continued across most parts of the state since last night. Meteorological Center in Shimla has issued orange and red alerts for heavy rainfall in various districts till 21st July and has advised people to remain vigilant. A report.
6: The Meteorological Center Shimla has issued a yellow alert for today in 7 districts, Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Kullu, Solan and Sirmaur, while an orange alert has been issued for Kangra, Mandi and Shimla districts. The department has also issued a red alert for heavy to very heavy rainfall on 20th July in Chamba, Sirmaur, Mandi.

0: সব সরকার হেলথ সেন্টারসে বিপি লাগা ফ্রি চেক আপ ট্রিটমেন্ট আর কাউ ভাল থাকবা মদত দি আছে বিপি লাগা কোনবা সবাল থাকলে টোল ফ্রি নম্বর 1800 1166 66 কল।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
3: A house, a mansion, a cottage, big or small, let's count them all.

Well, my dear friends, apni khan sopi aji laga playlist huni kina enjoy kore thakibo bile moi pura omit kori ase. Yate last git ekta dikina hit program sesh kori diya hobo. 10:20 pra apni khan huni hobo Delhi pra rally kori diya world news. To my dear friends, apni khan sopi itu news karni bhi tune in kori thakibo karni kori diya se. Itu pichita apni khan western music huni hobo. Itu pichita apni khan ge arabi Ekorbajatade, RJ's Choice and the Film Songs Programani di Hobo. To my dear friends, Abnikan Zobi, it to soap like a git can hunibokane, the program can soapy hunibokane, Abnikan soapke quidiese. Or my dear friends, a gentle melody which reflects the beauty of the monsoon and showcases Lata Mangeshkar's effortless grace. It to git amikan hunibo, chupke, chupke, film bra. Lata Mangeshkar was the music this is SD Parman, lyrics Anand Paksi. Aro itu logote amigane ajilaga playlist yate says kuridiyabo. Thank you so much. We hope this timeless classics added warmth and nostalgia to your rainy morning this morning. Once again, we urge amikhala listeners on kun kun low lying areas te thaki ase apni kan sopi itu laga flood warnings kange thian de rakhi kina. अपने का जो भी एक ता सुरक्षित थके बोले अरो पारदाक वाटर लॉग रोड्स कंगे ना जा बोले अरो लोकल एडवाइजरीज कन लाग ही की थके ऐसे ऑथरिटीज कन ब्रकुआ कन सब मनी की ना अपने का जो भी थके बो करने कुईती ऐसे एंड अमी का जो भी वी होप अमी का रेन ब्रा एक ता प्रॉस्पेरिटी अरो एक ता नूतन जीवन आनी दीपो नॉट हार्डशिप राइट तो माय डियर फ्रेंड्स इट उम्मीद लगते याते लास्ट गीत आमी खान हुनी आबो चुपके चुपके फिल्म ब्रा हुनी किना एंजॉय करबी एंड हैव अ ग्रेट आवर्स अहेड माय डियर फ्रेंड्स

पेश है आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संसद परिसर में चल रही है। सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 देशों मालदोवो, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओएमआर शीट की जांच और समीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। खराब मौसम के कारण आज से श्री अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आई, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है, या खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय बन गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा और फीफा विश्व कप के फाइनल में आज रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। फाइनल मैच के लिए फुटबॉल प्रेमियों के लिए उत्साह को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि शहर भर के रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य स्थान सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आ गया जी। आ गया कौन सा वाला प्रोग्राम? प्रोग्राम आ गया वो वाला जिसमें आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं अपने नाम के साथ में। तो फिर किस बात की देरी है साहब? देरी है आपके मैसेजेस की, यानी कि आप जब मैसेजेस भेजेंगे बताएंगे कि साहब ये हमारा गाना चला दीजिए आप, अगर हमारा वाला गाना चल जाएगा तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन साहब देखिए, एक बार अगर आपका गाना चल गया तो बता दीजिए साहब कि आपका गाना चल गया है ना। दूसरी बात, आपके मैसेज अगर आपने सोचा एक मैसेज आपने भेज दिया और फिर उसके बाद मनीष भाई अपना गाना चला देंगे, साहब आपको मैसेज जो है ना वो नीचे चला जाएगा। इसलिए मैसेजेस लगातार अगर आएंगे तो ठीक रहेगा, ताकि वो ऊपर मेरे को स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। तो भाई साहब मैं आपसे बस रिक्वेस्ट है 9868107070, ये हमारा नंबर है।

आगे देखिए जरा हमारी महफिल में कैसा अच्छा लगेगा। तो पहली पसंद कहाँ जा रही है? पहली पसंद जा रही है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ के लिए। और फिर उसके बाद कहाँ जाएगी ये तो आपके मैसेजेस बताएंगे, इसलिए 9868107070 हमारा नंबर है। लोगों को बताइए, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कि भाई साहब शुरू हो चुका है मेरा वाला सॉन्ग। और दूसरा भाई साहब देखो, कोशिश मेरी ज्यादा से ज्यादा गीत चलाने की होगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अगर ना चले तो भाई थोड़ा सा हमारे साथ साथ बने रहिएगा, ठीक है? इसलिए ध्यान रखिए, नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी नंबर दे सकते हैं 9868107070। एक घंटे तक ये फोन मेरे हाथ में रहेगा।

और अब जो गाना आप सभी लोगों के लिए बीच में आ रहा है, हम आपको बता दें कि आपको लेके चलते हैं हम सीधा खांडवा से लक्ष्मीनंदन रोहित रितु मुकेश जगताप जी के जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश में, जहां पर मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना जी, अनुज जी, आयुषी, रमेश चंद्र जी सबके नाम है भाई, शेख मोशा भाईजान, राजकुमार जी, आप सभी की पसंद का गाना साहब ये चल लिया है। इसलिए मैंने आपसे बोला साहब, देखिए मैसेजेस आएंगे ना तभी पता चलेगा, जिनका गाना चल जाए वो धन्यवाद का मैसेज भेजकर साइड हो जाएं। और हमारे साथ साथ में महाराष्ट्र से हमारे साथ राजकुमार की संतानी हमारे साथ हैं सौरभ अनेजा, उनके साथ किसी भी गाने में हमारा नाम ले लीजिए।

0: पास में भी आपके गाने लगे हुए हैं।
1: भाई देखिए, अब आप सभी लोगों के गाने हम यहाँ पे चलाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना, कोशिश मेरी लगातार रहेगी। अब जो फरमाइश चल आ रही है जम्मू कश्मीर से है साहब, राजू मल्होत्रा और रानी मल्होत्रा हमारे साथ में, उनकी फरमाइश यहाँ पे चल रही है। मैं साथ में बताना चाहूँगा, प्रदीप सलूजा भाई आपने जो गाना बताया वो हमारे पास नहीं है, और विजेंद्र भाई आपने जो गाना गाया वो फिल्म नहीं हमारे पास, तो इसलिए कोई और दूसरा भेजेंगे तो मैं कोशिश करूँगा चलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका।

0: और जम्मू कश्मीर के बाद आपको लेके चलते हैं हम कहां पर, उत्तर प्रदेश, वो भी बिजनौर शहर के अंदर, जहां पर राहत भाई और गजलबाजी हमारे साथ वहां पर हैं। साथ साथ में हम बता दें कि आपके गानों के लिए कोशिश लगातार है। जैद और हुदा गाजियाबाद से हैं। देखिए भाई, हम कोशिश तो लगातार कर रहे हैं कि आपको हम जो गाने हैं वो आपको सुनवा दिए जाएं, लेकिन जो गीत आपने बताया, देखिए कोशिश लगातार करेंगे। अपने दोस्तों को बताइए साहब, है ना, कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके गीत चलाने की। तो ये हो गया ना गाना।
1: और भैया जिसका गाना चल जाए वाके बाद हमको थोड़ा सा बता दे भैया कैसे चल लो, गाना होंगे नहीं चल रहा है, मज़ा सा आयो कि नहीं आयो, अगर आयो तो फिर मैसेज भेज के बताइयो।
0: लेकिन मैसेजेस आपको लगातार भेजने पड़ेंगे भाई साहब, आप सोचो कि मैसेज आप चला गया और फिर वो आएगा। इसलिए कोशिश लगातार करते रहिए। ठीक।

0: मेरी नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा भाई साहब, अगर मैं सुनाऊंगा तो फिर गाना आप कैसे सुनेंगे। अगली पसंद अफशा खानम की धामपुर बिजनौर से, ये पसंद उनकी और ये गीत उनके लिए।
1: तुझे देखा,
0: अरे हम भी तो ये कह रहे हैं भैया, 9868107070 हमारा नंबर है। और उसके बाद आपको लेके चलेंगे कहाँ भाई, लेके चलेंगे, इसलिए आपके मैसेजेस हमारे पास होने बहुत जरूरी हैं।

तो फिर जब शो आपका है तो फिर आपके नाम से गीत चलेंगे। अब आपको लेके चलते हैं कहाँ, विजेंद्र भाई कहाँ, अकोला महाराष्ट्र से। मनीष भाई हमारे भी गाने चलाओ ना, आपने वो गाना बताया नहीं है, दूसरा गाना लीजिए साहब। आपके भी नाम से गाना चलाने की पूरी पूरी कोशिश है। अब ये गाना कहाँ चल रहा है, सुपर संडे हो गया है, अमरदीप कुमार जलाकंडापुरम झेलम झेलम तमिलनाडु से, उनका भी गाना हमने निकाल दिया है साहब।

0: राज है।
1: देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ से मतलब सभी से मेरी आपकी विनती है, सभी लोगों से हाथ जोड़कर आप एक मैसेज भेज देंगे ना, वो मैसेज बहुत नीचे चला जाता है, आप यकीन मानिए मेरी बात का। इसलिए आपको लगातार मैसेजेस भेजने पड़ेंगे ताकि वो मैसेज ऊपर आ जाए, तो फिर मैं गाना चलाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए नंबर बड़े ध्यान से सुनिए, 9868107070। वैसे तो नंबर आपके पास ऑलरेडी है ही, ठीक है। तमिलनाडु, जितनी देर में टिटर टिटर होती है मैं आपको बता दूं कि गोवा में जो हमारे साथ है नवलु वरक, गांव मलपड़, जिला उत्तर गोवा यानी नॉर्थ गोवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर पहले तो बहुत धन्यवाद जो आपने मैसेज लिखा, थैंक यू सो मच इसके लिए। और जो आपने गाना बताया, गाना वो तो नहीं लेकिन हाँ इस फिल्म का गाना सुनवाते हैं, क्योंकि वो गाना कुछ और लोग भी कह रहे हैं।

मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता के ही जाऊंगा कि आपकी पसंद के गाने यहां पर चल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। चलाने वाला बंदा रेडियो पर मनीष आजाद, रेडियो वाला आप लोगों के साथ में। मोहरा फिल्म के गीत के फरमाइश हमारे पास यूपी हकीमगंज से, हमारे साथ आसिफ अंसारी, तालिब शेख, मुकीम शेख, इमरान शेख, बादशाह, वो क्या बादशाह भाई नाम देखो भाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे वहां बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पर बारिश क्यों नहीं हो रही है भाई। और ये वाला गाना देखिए, गोवा से भी हमको बोला गया था इसी फिल्म का गाना है, आपको हमने चला दिया। पूरी पूरी कोशिश है लगातार ज्यादा से ज्यादा गीत चलाने की। टिप टिप टिप टिप है रो है भाई, यहाँ क्यों नहीं है रो है। जिसका गाना चल जाए धन्यवाद का मैसेज दे के साइड में जरा आराम से चुपचाप से बैठ जाए, बाकी लोगों को देखो कोशिश करने जाए कितना कितना हो जाए, ठीक है मेरा भाई? नहीं तो थोड़ा सा काम हमें भी करने दो।

0: मैं भी क्या करूँ। डोली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत अच्छा मैसेज दिया डोली, शुक्रिया धन्यवाद। और हमारे साथ अब जो मैसेज हमारे पास आ रहा है, अब आपको लेके चलते हैं हम सीधा होली चौक और उत्तम नगर से, जहां पर हमारे साथ जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल जी, अमन खोरवाल जी, दीपांशु खोरवाल हमारे साथ यहां पर हैं। और जो उन्होंने गाना बताया भाई, गाना तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब भाभियों से मैं ये कहूंगा कि प्लीज आप ना जाएं, क्योंकि इसके अंदर फरमाइश ऐसी करी गई है, आप भी अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। तो फिर सुनने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। कैसे? ऐसे
1: देखो। हाँ
0: नहीं नहीं
1: माइके
0: नहीं नहीं नहीं
1: मत पा माइके माइके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस बेबी
0: कुछ लोगों के मैसेज एक बार आके वो नीचे चले गए, वो कि मनीष भाई हमसे नाराजगी। देखिए नाराजगी नहीं है, मैं किसी से नाराज नहीं होता हूं। हाँ कुछ लोग मुझसे बेहद नाराज रहते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर ऐसे वो भी आ रहे हैं, उनके वो व्हाट्सअप आ तो रहा है लेकिन व्हाट्सअप पे क्या है कि उनके वो किसी की फोटो नहीं लगी है, अब वो पता नहीं चल रहा मैसेज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई जरा ध्यान रखो, 9868107070।

गले में हिचके साथ साथ खिंच। लेकिन भाई साहब मुझे बात बताओ, मैंने हॉली चौक वालों को गाना तो चला दिया उत्तम नगर से, ये फिर इतनी सारी क्यों फरमाइश फिर दोबारा से वहां से आ गई है? फिलहाल आपको हम खयाला लेके चलते हैं विष्णु गार्डन, जहाँ पे राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाने की फरमाइश लग चुकी है। दूसरा, वेस्ट बंगाल से हमारे पास एक मैसेज आया, साहब आपका जो गाना है वो मेरे पास नहीं है, तो दूसरा बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उसको चलाने की, है ना? मैं इतना ही बोल सकता हूँ साहब, देखो मेरे से नाराज नहीं हो साहब, मेरी मम्मी मारेगी मुझे। कोशिश इसलिए ज्यादा से ज्यादा है, खोरवाल परिवार उत्तम नगर से अभी तो मैंने गाने चलाए आपके, अब एक साथ सारे के सारे अगर बैठ के हमें गाने लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप भी लिख सकते हो, कैसे? 9868107070

भैया जी मैं फिर आपसे बोलूंगा, विनती है ये, एक मैसेज भेज के ना वो सपने ही चला जाता है, मैं क्या करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम शाहरुख खान जी को लेकर आए, कोयला फिल्म निकाली है हमने उनके लिए, तुझे देखा तुझे तो जीने लगे हम। रायबरेली से हमारे पास मैसेज है, आपकी पसंद साहब ये चल रही है, ठीक है जैन जैन। भाई मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रही है, कहाँ पर, गन्नौर यूपी के अंदर, और इसके साथ साथ वहाँ पर भी सब लोग हमें सुन रहे हैं। भाई कोशिश तो देखिए लगातार बनेगी, बनाएंगे, देखिए थोड़ा बारिश को रोक के रखिए आप। भाई नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है, मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ।

भाई गाना चल लिया, गाना चल लिया, गाना चल लिया। अरे गाना तो चल रहा है भाई साहब, मैंने अभी देखो अभी मैंने वेस्ट बंगाल वालों को क्या बताया, मैंने कहा साहब आपका गाना हमारे पास नहीं है, दूसरा गाना भेजिए। अब वो इधर उधर चले गए होंगे, समझ जाओ जरा। अब इतने में उन्होंने मैसेज लिख दिया कि नहीं सर आपने मेरा गाना नहीं चलाया। अरे मेरे भाई साहब मेरी बात भी तो सुन लो, मैं कैसे करके मानूंगा, गाना तो मैं चलाने वाला हूँ। गुड आफ्टरनून सर, आनंद विहार वालों से कोई नाराजगी है? अरे साहब कोई भी नाराजगी नहीं है, मैं जो गाना चलाने वाला हूँ ये किशन वंजानी जी हमारे साथ, नीलम, स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। साहब जो गाना चल रहा है, वैसे ये जो आपने बारिश के मौसम की बात करी है तो ये यहाँ भी चलेगा, क्योंकि हमारे साथ अगर कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, फैजी, फराज, फरहीन, फारिया, ताहिरा और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार है, वो लोग भी हैं। और जो साथ में जो गाना मैंने आपको बताया है ये गाना उसके साथ बिल्कुल मैच कर जाएगा अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे तो, ठीक है। बाकी हमारे साथ गुड्डू धाकड़ भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बीड़ावान गाँव से, ठीक है ना। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दूसरा भाई, जिसका गाना चलते जाए थैंक यू का मैसेज देके साइड में बैठते जाए, बहुत सारे लोगों की फरमाइश लगी पड़ी है, सबको लग रहा है साहब कि हमारा गाना नहीं चल रहा, गाना नहीं चल। अरे मेरे भाई इतने सारे गाने चल गए, आपको पता है मेरे शोज के अंदर 15 गाने चलते हैं। बड़ा

अरे तेज चल गया गाना, तेज चल गया भाई, तेज चल गया ये गाना। कोशिश मैंने गाना, देखो मैं सब कर रहा हूँ। अब ये बागेश्वर निषाद हमारे साथ है गोरखपुर यूपी से। साहब देखो मैंने कहा ना, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके गाने चलाने के लिए, इसलिए जो गाना आपने कहा भाई वो तो नहीं मिला, लेकिन

0: मैं भी यही कह रही हूँ, मेरा दर्द भी कोई नहीं जान रही है भाई साहब, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, मेरे को भी बहुत दर्द हो रही है जब गाना नहीं मिल लिया है।
1: क्या करूं कैसे चलाऊं ये जो गाना, जैसे जैसे मिलकर मैं चला रहा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश है। अब ये मैं आपको देखो, मैंने कहा ना वेस्ट बंगाल लेके चलते हैं आपको, कहाँ पे, फलकाटा की तरफ है, जहाँ पे वो हमारे सुकल सुकलाल बालाजी हमारे साथ वहां पर हैं। साहब आपका गाना देखो जो धीरे धीरे से मिला है वो मैं चला रहा हूँ साहब, ठीक है। मेरी मम्मी से मत बोलना मेरी बहुत पिटाई होगी, नहीं तो मेरे को बहुत पिटाई लगेगी मेरे को। हमारे साथ मेरठिया भी जुड़ गए भाई साहब, मैं क्या राज बल्ला भाई क्या हो रहा है। बबलेश पवार भाई आपने जो गाने भेजे एक भी गाना नहीं मिला मुझे, आप जरा दूसरे गाने भेजिए तो मैं कोशिश करूंगा उसको ढूंढ ढूंढ के कुछ चलाने के लिए। लगातार कोशिश तो है ना, इसलिए कहता हूँ 9868107070। 10-12 मिनट रह गए साहब।

आप भी जैसे हो ना वैसे आप हमें प्यारे लगते हो। मैंने कहा ना देखिए कोशिश मेरी लगातार रहती है ज्यादा ज्यादा। प्रदीप सलूजा भाई थैंक यू सो मच यार, आपने सच में दिन बना दिया और थैंक यू। और मोहम्मद इम्तियाज हमारे पास जवाहर कैब कीर्ति नगर से। मनीष भाई क्या हो गया, मेरा मैसेज इतने सारे भेज दिए मिल क्यों नहीं रहे? अरे वो नीचे चले गए आपसे पहले, आपने बोला मैंने 20 भेजे, लोग भाई साहब 40-60 ऐसे मैसेज भेज रहे हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, आपका मैसेज नीचे। मैंने थोड़ा नीचे नीचे आके देखा, मैंने देख लिया गाना भी मिल गया, ये गाना भी पसंद का हमारी। वैसे जब मैं शूज करता वो बोले भाई साहब सारे गाने ये वाले चलते थे। मात्र गिनती के हमारे पास 9-10 मिनट रह गए हैं, कोशिश इसमें भी 2-3 गाने चला देंगे। मैसेजेस

भाई क्या बात है, क्या बात है। इस गीत ने तो भाई साहब मैं गया स्टूडियो का रंग ही बदल दिया। बबलेश पवार जी हमारे साथ, डैनी पवार, मनीष पवार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच है। और नाम शामिल करने के लिए सर धन्यवाद, आपने बोला थैंक यू सो मच है। इसके साथ साथ हमारे पास भाई देखो गाना नहीं है तो नाम ले लो जी, गुड्डू है, नाम तो लिख देते अपना। कौन कौन है भाई? दीवाना मैं तेरा, अच्छा हीरो, पुनीत, पुनीत रावत ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और का नाम लेना है तो बता दो साहब, नाम मैं सबके ले लूंगा एक साथ ही, है ना। थैंक यू सो मच है, बहुत कमाल हो गया है क्योंकि गाने चलने चलने से एकदम से काम हो जाता है। ये प्यार का मौसम आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया भाई।

भाई मुझे समझ में नहीं आता, उसमें मैसेज में लिखा है स्पेसी साहब भाई का नाम आया है, मेरा नाम नहीं आया, ध्यान दीजिए। भाई का नाम आ गया ये जरूरी नहीं है, मतलब ये तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया अगर भाई का नाम भी आ गया तो। फिर भी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज घोरवाल, कमला रानी जी, गीतिका घोरवाल, भानु प्रकाश जी साहब, ये वाला आपकी पसंद का गाना, फिल्म को जो आपने नाम लिखी थी उस फिल्म के ये वाला गाना मुझे मिल गया है, बाकी तो नहीं मिला, ठीक है ना साहब भाई। ये भी मैं आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई का नाम आया ये। चलो जी साहब, जनकपुरी से हमारे साथ प्रदीप सलूजा जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है आपका, सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े। जैद और हुदा गाजियाबाद से, ध्यान रखेंगे भाई, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से, कैसे नहीं दिया जा रहा है नाम, दे तो रहा हूं, दे दिया। और हमारे साथ ये वरुण वाशिनी फ्रॉम कोरियागंज अलीगढ़ से भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगी। राष्ट्र आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओएमआर शीट की जांच और समीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। खराब मौसम के कारण आज से श्री अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। और फीफा विश्व कप के फाइनल में आज रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। फाइनल मैच के लिए फुटबॉल प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि शहर भर के रेस्तरां, कैफे और अन्य कई स्थान सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: जी आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है छोटे उस्ताद। और छोटे उस्ताद रविवार के दिन हम खास तौर पर आप सभी के लिए लेकर आते हैं अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने साथियों के लिए वो प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उनके डेवलपमेंट की, उनकी जिंदगी में क्या कुछ खास किया जा सकता है, क्या कुछ खास हो रहा है और क्या कुछ खास होता रहा है, इन सभी के बारे में हम बातें करते हैं। और अपने छोटे उस्तादों को कैसे हम कहते हैं ना कि जब बात छोटे बच्चों की होती है तो छोटे बच्चों के स्तर पर जाकर क्या वो सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, कितना खास सोचते हैं, ये सभी ध्यान में रखकर हमें बातें करनी पड़ती हैं और करना भी चाहिए क्योंकि ये जो हमारे छोटे उस्ताद हैं ना वो कहने के लिए तो छोटे हैं लेकिन उनका दिमाग बड़े बड़े सवालों के साथ एकदम लगातार एक्टिव रहता है और इन एक्टिव माइंड्स को जरूरत होती है सही दिशा देने की। और सही दिशा कोई भी दे सकता है, पेरेंट्स देते हैं, टीचर्स देते हैं, बहुत सारे दोस्त देते हैं, परिवार के और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनकी कुछ खास चीजें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन उनका असर जो होता है वो बड़ा होता है। स्वागत करते हैं आप सभी का। मौसम जब मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूं तो बादल हैं, जैसे कई बार होता है ना कि हम शॉपिंग करने जाते हैं कई बार और वहां पर कुछ महंगी चीजें देखते तो हैं, अच्छी लगती है लेकिन फिर हम लेते नहीं है। बादल भी कुछ इस तरह से दिल्ली के ऊपर से गुजर रहे हैं, लग रहा है कि बरसे, फिर सोचते कैसे चलो ठीक है आगे चलते हैं और कहीं और बरस जाते हैं लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बारिश होगी। और बारिश के इंतजार में हम थोड़ा ये गीत सुनते हैं, आपका स्वागत करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं अपने नन्हे मुन्ने साथियों की बातों पर।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद, मैं हूं आपके साथ राजेश। और बिल्कुल नाचने का, झूमने का, थिरकने का मन तो करता ही है जब मौसम हो अपने मन के मुताबिक। और मन के मुताबिक काम करने का तो मन हम सभी लोगों का करता है। चाहे हम याद करें अपने उस प्यारे से बचपन को जब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते थे जिनको सोच कर आज लगता है कि वाह क्या कमाल करते थे हम। तो ये जो बच्चों का दिमाग होता है ना बहुत ही कमाल का होता है। हर वक्त कुछ नया सोचने, नया पूछने, कुछ नया बनाने के लिए एकदम तैयार। हाँ, बस ज़रूरत है उसे सही दिशा देने की। अगर हम बच्चों को अगर देखें, जब हम चूज़ करते हैं, हम दसवीं में जाते हैं, दसवीं पास करते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बेहतर होगी, हम आर्ट्स में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे या फिर जाएंगे साइंस में। ये तो फैसला बाद का होता है, लेकिन ये जो इन विषयों के साथ लगाव की जो प्रक्रिया शुरू होती है ना वो काफ़ी

ये तो कमाल का काम कर रहा है बच्चा, और इस कमाल के काम में कुछ ऐसी चीजें सीख जाता है जो जिंदगी भर उसका साथ देती हैं, और कई बार तो समय से पहले जब कुछ सीख लेता है तो आने वाली कक्षाओं में भी उसके लिए आने वाले विषयों को समझना बहुत आसान हो जाता है।

ये जो मासूम सवाल होते हैं ना, कई बार परेशान करते हैं, लेकिन इन मासूम सवालों को अगर हमने सही समय पर जवाब दे दिया ना, तो फिर ये मासूम सवाल मासूम नहीं रहते, बल्कि बहुत ही चतुर चालाक हो जाते हैं। और इन सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा सोचिए, अगर हम बच्चों को हर चीज़ ऐसे ही करो कहकर सिखाएंगे, तो क्या वो सच में सीख पाएंगे? नहीं ना। इसलिए उन्हें थोड़ा खुला छोड़ देना चाहिए, उन्हें खुद से एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए। जैसे बच्चा अगर पेड़ बना रहा है, तो उससे हम पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ, पेड़ को पानी क्यों चाहिए, या फिर पत्तियां हरी ही क्यों होती हैं? और बस जब हम ऐसा पूछते हैं ना, तो यहीं से शुरू होती है असली सीख। छोटे छोटे सवाल उनके विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ा देते हैं, और जो कला होती है हमारी, वो उन्हें अपनी सोच को दिखाने का नया तरीका देती है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद और अब समय है एक नन्हे से ब्रेक का। लेकिन नन्हे से ब्रेक से पहले बता दें कि हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं, और उन साथियों में है प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी नई दिल्ली से, साथ ही साथ सौरभ अनेजा, इनका भी मैसेज हम तक आया है, गाजियाबाद से इन्होंने मैसेज लिखा है। और ये नन्हे मुन्ने साथियों के बारे में बातें जब हम कर रहे हैं तो आपकी भी बातें हम तक पहुँचती हैं लगातार। डॉली ने कहा है कि बच्चों की चित्रकारी भी अलग होती है। मेरे पास एक बच्ची आती है ट्यूशन में, उसने दिल बनाया और उसमें 3 या 4 रंग भर दिए और बड़े स्टूडेंट्स जो थे वो उसका मजाक बनाने लगे। तो मैंने कहा कि उसका दिल है, उसकी मर्जी, कितने भी रंग भरे। तो बिल्कुल ये होता है ना कि जब हम बड़े होते हैं ना तो फिर हम अलग अलग तरह के तर्क लगाते हैं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो फिर हमारा जो मन करता है, हमारी जो जिज्ञासा होती है, वो एक अलग ही ढंग से सामने आती है और उसको हम महसूस करते हैं। और जब इस तरह से डॉली आपने बहुत अच्छा किया, आपने उसको अप्रिशिएट किया, ये चीज़ें जो हैं बच्चे को लगातार कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगी। इसी तरह से हमें बच्चों को प्रेरित करना ज़रूरी है ताकि वो कुछ भी नया करने से हिचके नहीं, बल्कि वो करें, गलतियां करें, गलतियों से सीखें और गलतियों को दोहराएं नहीं, बल्कि और गलतियां करें और भी सीखें। और एक समय ऐसा आएगा कि जब गलतियां जो हैं वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएंगी और सीखने का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। फिलहाल हम भी बढ़ते हैं आगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
7: कोयल सी तेरी बोली,
8: हाय हाय,
7: तेरी छी नजर।

0: है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद, मैं हूं आपके साथ राजेश। और इस गीत में जो सच और साहस वाली बात कही ना, वो हम सभी की जिंदगी में बिल्कुल सटीक बैठती है कि अगर सच और साहस के साथ हम जिंदगी में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही चल रहा है। और जब छोटे उस्तादों की बात करें तो कहते हैं ना कि जब बचपन से ही कोई अच्छी चीज़ हमारी आदत का हिस्सा बनती है तो जिंदगी भर हमारा साथ देती है और हमें अच्छी राह पर ले जाती है। तो ये सच और साहस कुछ उसी तरह की आदतें हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बात हम कर रहे थे कि किस तरह से अपने इन छोटे उस्तादों को विज्ञान की तरफ, कला की तरफ, कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो वैसे भी ज़िंदगी जो है गुणा गणित तो हमें सिखाई देती है। अगर बात करें हम विज्ञान और कला की, तो इस पर अगर देखें तो कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ मज़ेदार आइडियाज़ हम सोच सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं कि घर या स्कूल में हम एक क्रिएटिव कॉर्नर बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए इसके लिए, कुछ रंग चाहिए, कागज़, मिट्टी, छोटा सा मैग्नेट या लेंस, बस। फिर देखिए बच्चे क्या क्या कमाल करते हैं। मिट्टी से खेलते खेलते वो आकार और संतुलन समझने लगते हैं, जो आगे चलकर इंजीनियरिंग की नींव बनता है। अब देखिए ना, क्ले जो है वो यूं देखने में तो लगता है कि हाँ कितनी सॉफ्ट चीज़ है, लेकिन उसके साथ जो बच्चे आकृति बनाते हैं और संतुलन सीखते हैं ना, वो बड़ी ही कमाल की चीज़ है। और ये खेल खेल में बड़ी बड़ी बातें सीखने का जो हुनर है, शुरू से ही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। और फिर जब समय के साथ वो सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो जो बचपन में सीखा गया हुनर है वो उन्हें बहुत मदद करता है।

फिल्म दिल धड़कने दे से ये बहुत ही कमाल का गाना, और ये गाना हमने आपको इसलिए सुनाया कि थोड़ा आप भी थिरक लें, थोड़ा झूम लें, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है तो थोड़ा झूमने का मन करता है। और जब मौसम की बात हम करते हैं तो ये जो मौसम है ना बारिश का, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है हम तक, बहुत सारी सीख लेकर आता है। बच्चों को जब हम सिखाते हैं ना अपने छोटे उस्तादों को कि ये हमारे लिए कितनी ख़ास चीज़ है, तो जब हम प्रकृति के साथ जुड़ाव की बात करते हैं तो ये वो मौसम है जब हम सबसे ज़्यादा उनको सिखा सकते हैं जो ये बारिश के बूंदे हैं इनका महत्व, सिखा सकते हैं हम कि जो कागज़ की नाव चलाना ये सब हमारे बचपन का हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ हम सिखा सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा बीज जब हम गमले में डालते हैं या फिर अपने गार्डन में कहीं पर या जहाँ भी जगह है वहाँ पर लगाते हैं तो फिर धीरे धीरे कैसे वो पनपता है, कैसे वो निकलता है ज़मीन से और फिर कैसे वो पौधा बनता है और फिर उसके बाद कैसे पेड़ बनता है, ये सभी चीज़ें और इन सभी के साथ हमारा जुड़ाव, ये सब भी तो हम सिखा सकते हैं इस खास मौसम में। और एक और चीज़ है सिखाने का, एक ट्रेडिशनल जो सबसे कमाल का तरीका है।

वो है कहानियां, क्योंकि कहानी तो हर बच्चे की फेवरेट होती ही है। अगर हम ऐसी कहानियां सुनाएं जिसमें विज्ञान और कला दोनों हो तो मजा ही अलग है। जैसे कोई बच्चा जो अपने बनाए चित्रों में जान डाल देता है, या फिर कोई वैज्ञानिक जो रंगों से नई खोज कर लेता है। और वो कैसे हम बोल सकते, वो था ना वो मिस्टर इंडिया का भी तो एक कमाल का वो विज्ञानी तो था, वो साइंस फिक्शन की तरह से हम बात करते हैं, एक उस पर एक नॉवेल भी था, एक कहानी भी थी, तो वो भी तो एक कमाल का एक इनोवेशन था, एक कमाल की कहानी थी जिससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली। क्योंकि विज्ञान अपने आप में एक ऐसी चमत्कारी चीज़ है जो अपने में बहुत सारी चीज़ें जो है समेटे हुए है। और ऐसी कहानियाँ बच्चों को सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि ये भी सिखाती हैं कि सीखना कितना मजेदार होता है।

0: FM Rainbow 102.6।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
7: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की उम्मीद।

बातें नए भारत की, तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने छोटे उस्तादों की, कैसे उनकी जिंदगी में बहुत जल्दी से विज्ञान और कला के प्रति हम उनके मन में रुचि पैदा कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और जब हम आज के समय की बात करते हैं तो आज के समय तो टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ, तो क्यों ना उसका सही इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ऐप्स और गेम्स हम चुने जो बच्चों को ड्राइंग, म्यूजिक और साइंस एक्सपेरिमेंट्स साथ साथ सिखाएं। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वो है स्क्रीन टाइम लिमिट। असली मज़ा तो तब है जब बच्चे बगीचे में जाकर पौधों को देखें, चिड़ियों को फुदकते या चहचहाते देखें, रात को आसमान में तारों को गिने, या फिर प्रकृति से जुड़ने के कुछ और उपायों को अपनाएं। और हमने तो कहा ही है कि ये जो मौसम चल रहा है, मानसून जब से आया है और जब तक रहेगा तब तक ये प्रकृति से जुड़ने का बहुत ही कमाल का समय है। तो इसमें आप ये वाला मौसम ऐसे ही ना जाए, बल्कि बच्चों को कुछ हम नई चीज़ सिखाएं, नई चीज़ बताएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में ये जो बचपन है ना, कुछ गहरा असर कर जाए।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद। और दोस्तों अब समय है कि हम आपको बता दें कि जैसे ये गाना कह रहा था ना फॉरएवर, उसी तरह से हम भी लगातार रहते हैं आपके साथ 2400 घंटे। और अगले कुछ घंटों में आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम है उसके बारे में बताने का समय आ गया है। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। और आज का जो विषय है उस प्रोग्राम में वो है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर। और इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता जो कि एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। इनसे बातचीत आप सुन पाएंगे। और इसके बाद 4 बजे से एक बार फिर से मैं राजेश आपके साथ होऊंगा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है रेनबो जीनियर, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों के सही जवाब देकर बनते हैं आप रेनबो जीनियस। तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा हमारे साथ 4 बजे से। और उसमें हम और आप एक दूसरे के साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। उसके बाद 5 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है सिटी लाइट्स। एसएम शाहिद उस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगे। और 6 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में आप सभी के मैसेजेस को शामिल करेंगे प्रोग्राम में गीत गुंजन। तो अगले कुछ घंटों में बात और प्रोग्राम ये होने वाले हैं आपके लिए। और अब चलते चलते इस प्रोग्राम में यानी कि छोटे उस्ताद में हम बच्चों के लिए अपने छोटे उस्तादों के लिए जरूर करना चाहेंगे कि बच्चों के लिए सबसे जरूरी बात है बच्चों की सराहना। उनकी हर छोटी कोशिश पर वाह कहना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को लगता है कि उसकी सोच की कद्र हो रही है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर वो और सीखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। और यही कला और विज्ञान का संगम उसे न सिर्फ अच्छा छात्र बनाता है बल्कि एक क्रिएटिव और समझदार इंसान भी बनाता है। और यही तो हम चाहते हैं ना कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा पढ़ें आगे बढ़ें। इसी बात के साथ राजेश को दीजिए अनुमति आपके लिए ये गीत। नमस्कार।

किस परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

0: In the first phase of census, the house listing and housing census will be conducted. This will record details about your dwelling and housing. Let us make this effort successful through our participation. Let every person join, every household take part, and let the nation move forward. Census 2027, our census, our progress.
1: FM Dragoban.
2: 103 MHz.
1: News, music and entertainment. FM 103 MHz.
3: जी हाँ, अपना कान हुनी आसे आकाशवाणी एफ एम ट्रैकपन 110 MHz हुनी थका सब बिलाग इतिया समय अपना कान मई लगते हुनी आसे पुरानी हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम और इट प्रोग्राम टे अपना कान सब के आको स्वागत कर आसे और जुदी अपना कान इतिया हे ट्यून इन कर आसे और प्रोग्राम टे अपना कान एस एम एस द्वारा आई किना शामिल हबले मन आसे कहले माने अपना कान लिखि किना पठाई दिबी 9436805333 নম্বর আকো কই দি আছে 9436805333 একটা গীত শুনিব আর তার পছতে আরবি আপনার খালা মেসেজেস খান লই দিয়া হব তো শুনিব প্যার ঝুকতা নাহি ফিল্ম কি গীত গাইছে শবীর কুমার

0: कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेन्द्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता

0: सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
1: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन देयर टू बी गिविंग चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
2: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
3: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
2: Which should help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
2: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160 km long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House Annexe. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the business advisory committee.
0: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.
4: Today the entire opposition, all parties have all walked out, all party meeting in protest because NCPI, which is an unrecognized party, these so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. Ambassador to Moldova and Romania, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, has said that President Murmu's visit to the two countries will be historic. Talking to Prasar Bharati, Dr. Mohapatra said India and Moldova enjoy warm and friendly relations and the visit would mark a significant and historic milestone and elevate bilateral ties to a broad-based partnership.
5: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova. Similarly, when we talk about Romania, and it would be basically in the more than 3 decades. So given that importance, it is historic. Both the countries and the leaders with the leadership, we would be very much happy to review our existing bilateral relationship. We would be also identifying the key areas. In fact, Honorable President is accompanied by a strong business delegation. Similarly, Honorable President would be visiting the parliament in Romania as well as Moldova, which would help us strengthen the parliamentary relationship.
0: President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, met Vice President C.P. Radhakrishnan in New Delhi today. Zanzibar is the semi-autonomous region of Tanzania. It has its own constitution, president, House of Representatives and flag. During their meeting, they reviewed the full spectrum of India-Tanzania relations and explored new avenues for future collaboration. The Vice President in a social media post said that the meeting reaffirmed the enduring India-Tanzania partnership and the special relationship India shares with Zanzibar, rooted in centuries-old maritime, cultural and people-to-people ties. The Union Ministry of Road Transport and Highways will develop over 160-kilometer-long Rameshwar Paradip Highway along Odisha's coast at a cost of over 8,000 crore rupees. The ministry said the project will transform Odisha's coastal region by improving road infrastructure and boosting tourism and economic activity along with spiritual journeys. We have more from our correspondent.
6: The new Rameshwar Paradip Coastal Highway is over 160-kilometer corridor that will redefine connectivity across Odisha's coastal belt. The project being developed by the Ministry of Road, Transport and Highways has a total capital cost of over 8,000 crore rupees. The highway will pass through Khurda, Puri, Kendrapada and Jagat Singhpur district, creating a seamless connection between important cultural, religious, tourism and economic destination. The new highway will create opportunities for local communities by encouraging the growth of hotels, homestays, restaurants, handicraft markets and tourism-based businesses along the corridor. The project will also connect 9 economic nodes and 5 logistic nodes, further strengthening Odisha's economic network. With Samarth, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: The Delhi High Court today refused to intervene in activist Sonam Wangchuk's treatment at Safdarjung Hospital, saying the government's decision to move him from Jantar Mantar to the hospital could not be termed arbitrary. Justice Mini Pushkarna said no immediate order was needed to shift Wangchuk to a private facility, while noting that doctors were monitoring his condition and had provided treatment with his consent. The court was hearing a plea by Wangchuk's wife Geetanjali Angmo seeking his transfer to a private hospital. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of the parliament session beginning tomorrow. In a social media post, the police said Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of 5 or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of this stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. India has won 1 gold and 3 silver medals at the 37th International Biology Olympiad, IBO 2026, held in Vilnius, Lithuania. Bhavya Gunwal from Haryana won the gold medal, while Somil Meiti from West Bengal, Nishit Kalani from Rajasthan and Anmol Kumar from Punjab won silver medals. The Department of Atomic Energy said that there were 307 students from 78 countries in this year's IBO. Prime Minister Modi congratulated the Indian team by saying, "This was India's best ever performance at the prestigious global competition." Madhya Pradesh Cabinet today approved the draft bill on Uniform Civil Code. The Cabinet meeting was held at Jagdishpur in Bhopal, led by Chief Minister Dr. Mohan Yadav. The bill will be presented in the monsoon session of the State Assembly starting tomorrow. Chief Minister Dr. Yadav said that the UCC will give equal status to everyone in the state and appealed to the opposition to support the bill. In Jammu and Kashmir, at least 11 people were killed and 7 others were missing as torrential rains triggered landslides and flash floods in the twin border districts of Rajouri and Poonch early this morning. Our correspondent reports the worst devastation was reported from Surankot Tehsil in Poonch district, where most of the fatalities occurred. A multi-agency rescue operation is underway to trace the missing amid continuing rain and damaged roads. Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the situation and directed officials to